जा मेरे माँ ओ नामी ओ, मेरे माँ ओ नामी ना, मेरे माँ ओ नामी ओ, आसे जा मेरे माँ ओ नामी ओ, मेरे माँ।